0: कितना सुंदर, कितना मनमोहक।
1: ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर शांत वातावरण में विचरण करते हैं। अरे देख।

जागो, अरे जागो, अरे जागो सोने वाले वरवधू, इतनी जल्दी निद्रा में तल्लीन हो गए। जागे।

मुस्कर आएंगे हम। अरे अरे अरे ये क्या हो गया, हम कहां से कहां आ गए। शास्त्रीय संगीत गवैये अनूप शंकर की धोती लपेटकर कव्वाल मरम्मत खां ब्रदर्स का चूड़ीदार पजामा कैसे पहन लिया। अल्लाह प्रलय प्रलय। अरे शंख बजाओ।